0: एक बात बोले श्री कालिका माई भगवती की
1: जय,
0: भक्तर भगवान की
1: जय,
0: भक्त वत्सल भगवान की
1: जय,
0: सारा भक्त प्राणी की
1: जय।
2: महाते पांडव भाषण कुमा भाषण कालिका घोर से करुण दाना बहारू नागमा रवनाशिका संचल भाई घुमानी।

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: हजुर बुबा नमस्कार।
2: नमस्कार नानी। नमस्कार।
1: के छ खबर? सन्चै हुनुहुन्छ?
2: सन्चै छु नानी।
1: अनि यो वर्ष तीर्थयात्रा नजाने बा?
2: तीर्थ चाहिँ जाने भनेको नानी, तर कुन तीर्थ जाने भनेको?
1: जस्तै जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारिकाहरू पर्छन्।
2: ए उसो भए यी धामहरूको चाहिँ दर्शन गर्ने मेरो जीवनको ठूलो अभिलाषा थियो नानी। बरु कहिले र कसरी जाने हो सबै कुरा जानकारी पाउन त।
1: हजुर हुन्छ बा, सुन्नुहोस् है त।
3: दक्षिण भारतका प्रसिद्ध 11 ज्योतिर्लिङ्ग तथा तीनधाम यात्रा हुँदैछ। प्रमुख दर्शनीय स्थलहरू नेपालतर्फ जनकपुर धाम, लुम्बिनी कपिलवस्तु, सिजी सातसो धाम नवलपरासी, देवघाट धाम चितवन, पशुपतिनाथ काठमाडौँ। भारततर्फ हरिहर क्षेत्र तर्पण पटना, मातृ मोक्ष पिण्डदान, पुनः पुनः मा श्रद्धा स्थल गयाजी, विष्णुपद दर्शन, बैतरणी नदी स्नान तर्पण, वैद्यनाथ धाम शिवसागर पञ्च स्नान, गंगा सागर तथा कपिल मुनि र कलकत्ता दक्षिणेश्वरी काली दर्शन, जगन्नाथपुरी साक्षी गोपाल दर्शन सागर स्नान, मल्लिका अर्जुन श्री शैलम तिरुपति बालाजी, श्री रंगम कावेरी रामेश्वरम दर्शन, बाइसकुण्ड स्नान, कन्याकुमारी लक्ष्मी नारायण स्वर्ण मन्दिर दर्शन, भीमा शंकर श्री एम्बकेश्वर श्रीडी साई बाबा ग्रीष्मेश्वर दर्शन, नर्मदा नदी स्नान, ओमकारेश्वर ममलेश्वर उज्जैन महाकालेश्वर दर्शन, चोटिला चामुण्डा भगवती, द्वारिका पुरी द्वारिकाधीश दर्शन, गोमती गंगा स्नान तथा पिण्डदान, नागेश्वर गोपी तलाउ भेट द्वारका, बिन्दु सरोवर मातृ गया पिण्डदान, पुष्कर क्षेत्र ब्रह्म मन्दिर ब्रह्म सरोवर अम्बा देवी दर्शन, वृन्दावन मथुरा गोकुल रमण रेती, काशी विश्वनाथ तथा मणिकर्णिका स्नान पिण्डदान, चौरासी घाट दर्शन, प्रयागराज अन्तिम गंगा स्नान, श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या दर्शन गरी नेपाल प्रवेश। खाना बस्न अटो रिक्सा डुंगा सहित सम्पूर्ण लागत 1,20,000 लाग्नेछ। समय अवधि 42 दिन रहनेछ। प्रस्थान मिति 2083 साल माघ 5 गते। थप जानकारीको लागि सम्पर्क विष्णु अधिकारी, सम्पर्क नम्बर 9841870793, 9841870793, सादो बाटो चरीकोट दोलखा।

0: रेडियो सैलून सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल कैलुंग समाचार को सहयात्री।

98 49 45 98 44 46 56 50 आयोजक नेपाल मानव धर्म सेवा समिति जिल्ला शाखा आश्रम दोलखा उपशाखा आश्रम सुन्द्रावती।

0: भारी 100 भारी 1100 कति लगाउनु
1: लाइट बुढी सारी पैसा न सैसा चिकित्सा आश्चर्य।

0: हार्दिक मंगलमय शुभकामना।
1: विजयादशमी शुभ दीपावली एवं छठ पर्व 2083 तथा नेपाल सम्वत 1146 को पावन अवसरमा राजनीतिक दलमा आबद्ध नेता कार्यकर्ता उद्योगी व्यवसायी किसान राष्ट्र सेवक कर्मचारी सुरक्षाकर्मी पत्रकार शिक्षक विद्यार्थी तथा आम मतदाताहरूमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु।
2: पार्वत गुरूङ पूर्व मन्त्री एवं केन्द्रीय सदस्य नेकपा एमाले। हार्दिक मंगलमय शुभकामना।
1: विजयादशमी शुभ दीपावली एवं छठ पर्व 2083 तथा नेपाल सम्वत 1146 को पावन अवसरमा राजनीतिक दलमा आबद्ध नेता कार्यकर्ता उद्योगी व्यवसायी किसान राष्ट्र सेवक कर्मचारी सुरक्षाकर्मी पत्रकार शिक्षक विद्यार्थी तथा आम मतदाताहरूमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु।
0: रचना खड्का नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य। हार्दिक मंगलमय शुभकामना।
1: नेपालीहरूको महान पर्व विजयादशमी शुभ दीपावली छठ नेपाल सम्वत 2083 पावन अवसरमा सैलुङ संचार सहकारी संस्थाका संस्थापक शेयर सदस्य महानुभावहरू साधारण सदस्य रेडियोका कार्यक्रम प्रायोजक विज्ञापनदाता सम्पूर्ण श्रोता महानुभाव लगायत रेडियोको उन्नति र प्रगतिका लागि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्था उद्योगी व्यापारी शिक्षक विद्यार्थी कलाकर्मी पत्रकार किसान सुरक्षाकर्मी मजदूर लगायत सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछ।
0: शिवप्रसाद भण्डारी अध्यक्ष रेडियो सैलुङ संचालक समिति परिवार चरीकोट दोलखा।
2: हार्दिक मंगलमय शुभकामना। नेपालीहरूको महान चाड़ बड़ा दशैं शुभ दीपावली नेपाल सम्वत तथा छठ पर्व 2083 पावन अवसरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विभिन्न तह तबकामा रहेर भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएका नेता कार्यकर्ता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शुभेच्छुक शुभचिन्तक आम दोलाखाली आमा बुबा दाजुभाइ दिदी बहिनी लगायत स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सुख शान्ति समृद्धि दीर्घायु सहित उन्नत जीवनस्तरको कामना गर्दछु। यी चाड़ पर्वहरूले सबैको घरमा खुशियाली उमंग र मुहारमा मुस्कान ल्याउन सकुन् शुभकामना।
0: ओम कृष्ण आचार्य अभियान तथा प्रचार विभाग प्रमुख राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी परिवार चरीकोट दोलखा।
2: हार्दिक मंगलमय शुभकामना।
1: विजयादशमी शुभ दीपावली एवं छठ पर्व 2083 तथा नेपाल सम्वत 1146 पावन अवसरमा राजनीतिक दलमा आबद्ध नेता कार्यकर्ता उद्योगी व्यवसायी किसान राष्ट्र सेवक कर्मचारी सुरक्षाकर्मी पत्रकार शिक्षक विद्यार्थी तथा आम मतदाताहरूमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु।
0: शान्ति पाखरिन नेकपा एमाले केन्द्रीय लेखा आयोग सदस्य।
3: हार्दिक मंगलमय शुभकामना। विजय दशमी दीपावली तथा छठ पर्व 2083 पावन अवसरमा श्री सरस्वती इंग्लिश स्कूल सिंगटी सम्पूर्ण अभिभावक विद्यार्थी तथा देश विदेशमा रहनुभएका शुभचिन्तकहरूमा सुख समृद्धि तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौ। राजु शर्मा प्रिन्सिपल, कुबेर बुढाथोकी भाइस प्रिन्सिपल, सरस्वती इंग्लिश स्कूल सिंगटी।

0: हार्दिक मंगलमय शुभकामना।
1: विजयादशमी, शुभ दीपावली एवं छठ पर्व 2083 तथा नेपाल सम्वत 1146 को पावन अवसरमा राजनीतिक दलमा आबद्ध नेता, कार्यकर्ता, उद्योगी, व्यवसायी, किसान, राष्ट्रसेवक, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार, शिक्षक, विद्यार्थी तथा आम मतदाताहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु।
0: श्याम बस्नेत, नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य।
2: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ, सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

0: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: हजुर बुबा नमस्कार।
2: नमस्कार नानी। नमस्कार।
1: के छ खबर, सन्चै हुनुहुन्छ?
2: सन्चै छु नानी।
1: अनि यो वर्ष तीर्थ यात्रा नजाने बा?
2: तीर्थ चाहिँ जाने भनेको नानी, तर कुन तीर्थ जाने भनेको?
1: जस्तै जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारिकाहरू पर्छन्।
2: ए उसो भए यी धामहरूको चाहिँ दर्शन गर्ने मेरो जीवनको ठूलो अभिलाषा थियो नानी। बरु कहिले र कसरी जाने हो सबै कुरा जानकारी पाउन त।
1: हजुर हुन्छ बा, सुन्नुहोस् है त।
3: दक्षिण भारतका प्रसिद्ध 11 ज्योतिर्लिङ्ग तथा तीन धाम यात्रा हुँदैछ। प्रमुख दर्शनीय स्थलहरू नेपालतर्फ जनकपुर धाम, लुम्बिनी कपिलवस्तु, सेजी सातसो धाम नवलपरासी, देवघाट धाम चितवन, पशुपतिनाथ काठमाडौँ। भारततर्फ हरिहर क्षेत्र तर्पण पटना, मातृ मोक्ष पिण्डदान, पुन पुन मा श्रद्धा स्थल गयाजी, विष्णुपद दर्शन, बैतरणी नदी स्नान तर्पण, वैद्यनाथ धाम शिव सागर पञ्च स्नान, गंगा सागर तथा कपिल मुनि र कलकत्ता दक्षिणेश्वरी काली दर्शन, जगन्नाथपुरी साक्षी गोपाल दर्शन सागर स्नान, मल्लिका अर्जुन श्री शैलम तिरुपति बालाजी, श्री रंगम कावेरी रामेश्वरम दर्शन, बाइसकुण्डा स्नान, कन्याकुमारी लक्ष्मी नारायण स्वर्ण मन्दिर दर्शन, भीमा शंकर त्रिअम्बकेश्वर श्रीडी साई बाबा भीष्मेश्वर दर्शन, नर्मदा नदी स्नान ओमकारेश्वर, ममलेश्वर उज्जैन महाकालेश्वर दर्शन, चोटिला चामुण्डा भगवती, द्वारिका पुरी द्वारिकाधीश दर्शन, गोमती गंगा स्नान तथा पिण्डदान, नागेश्वर गोपी तलाउ भेट द्वारका, बिन्दु सरोवर, मातृ गया पिण्डदान, पुष्कर क्षेत्र ब्रह्म मन्दिर ब्रह्म सरोवर, अम्बा देवी दर्शन, वृन्दावन मथुरा गोकुल रमण रेती, काशी विश्वनाथ तथा मणिकर्णिका स्नान पिण्डदान, चौरासी घाट दर्शन, प्रयागराज अन्तिम गंगा स्नान, श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या दर्शन गरी नेपाल प्रवेश। खाना बस्न अटो रिक्सा डुङ्गा सहित सम्पूर्ण लागत 1,20,000 लाग्नेछ। समय अवधि 42 दिन रहनेछ। प्रस्थान मिति 2083 साल माघ 5 गते। थप जानकारीको लागि सम्पर्क विष्णु अधिकारी, सम्पर्क नम्बर 9841870793, 9841870793, सादो बाटो चरीको दोलाखा।

0: हार्दिक मंगलमय शुभकामना।
1: विजयादशमी, शुभ दीपावली एवं छठ पर्व 2083 तथा नेपाल सम्वत 1146 को पावन अवसरमा राजनीतिक दलमा आबद्ध नेता, कार्यकर्ता, उद्योगी, व्यवसायी, किसान, राष्ट्रसेवक, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार, शिक्षक, विद्यार्थी तथा आम मतदाताहरूमा सुख, शान्ति, समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु।
0: श्याम बस्नेत, नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य।
2: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ, सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

0: नमस्कार, रेडियो सैलन सामुदायिक एफएम बैठे थोप्लो सात मेगाहर्ज़बाट हो। म बद्री प्रसाद सागबाट। आज विक्रम सम्बत 2083 साल आश्विन शुक्ल पक्ष सन 2026 अक्टोबर 16 तारीख आश्विन 30 गते शुक्रवार षष्ठी तिथि। अब स्तुति गरौ।
1: आयु द्रोण कुमार कैसरी हो सक्षण कल्पय भरी।

गाडेरा पशुपति गुज्जेश्वरी दक्षिण काली समझेरा पशुपति गुज्जे काली दक्षिण काली समझेरा।